जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एक मिकता हो गई, उसके गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उचारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसी भी संगीत ग्रंथ राग किसी राग दी बंस विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। अते गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवी नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोवें पासे ऋषभ सुर रख के कीती जांदी है। इसका वादी सुर ऋषभ अते समाधी पंचम है ते गौण दा समा रात दा दूजा पहर मन्या है। सरवण करो रे मन कौन गत होए है तेरी, भाई कमरपाल सिंह जी पासों। दूजे शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द बोल हैं राम सिमर राम सिमर, ए है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत होए है तेरी।

राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर होए के भली बात, कहूं असब होए के बह

सावा नित खड़ी मुझो बन बाली राम राजे तार गुर हर मार जाली मेरे मंत्र नाम धार है खुने जाली जन नानक सतगुर मेल हर घर मिलिया बनवाली सुख महला सत श्री पत्र चार बसे से देखो

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृते सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने देव नानक तंका दास है सोई निरंजन दे एक शब्दं सर्व देवा देव।

माता जी आप दीदी बड़ी अपार बख्शिश के पाई मेहर हुई है। अमृत वेले संगता नु जागण दा बल बख्शा, गुरसिखी वाला जीवन बख्शा है। धन गुरु नानक देव पातशाह जी हो जिन्हा संगता च हाजरिया परतियो या गुरु के सिखा ने माई पाई बच्चा ने गुरु के शब्द नु अपनी कमाई नु सफल कर दियो माया अरदास कराई। गुरु नानक देव जी पातशाह जी हो साध संगत दी माया सफल करनी, गुरसिखी वाला जीवन बख्शना ते अपना मेहर भरिया तरना चे पातशाह दाता जी हो। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी हो जो आप जिन्हें बख्शिश मेहर कीती है, शक्ति बख्शी है। सिंह साहब जी हो सरदार हरभजन सिंह दे जोगी साहब दी जो ए गुरसिखी दा बूटा लाया है, आप इसे तरह गुरसिखा नू चढ़दी कला च रखना है। दाता जी हो अपना बख्शिश भरिया मेहर भरिया तरना है, पंथ दे अंग संग साहित्य होना है ते इसे तरह संघ साहिब नू आप बल बख्शना, निम्रता गुरसिखी वाला जीवन ते चढ़दियां कला च रखना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहिब दा पाठ।

0: भाई जोगा सिंह वेख रहा है किनू वेख रहा है फरीद जी ने लिखिया है फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़ व्यो दिया गंदला दे उत्ते भाई व्यो लपेटी हुई व्यो दिया गंदला उत्ते खंड लपेटी हुई पर विच जहर भाई जोगा सिंह ने सोचिया पौड़ियां थानी चढ़ जावा उपर नाली छाओ मना आनंदपुर साहब इथों नेड़े है कोई वेख ना लवे अजे नहीं जाना थोड़ा समा ठहर जांदे हां जिस वेले दुनिया अपने अपने घर सौ जाएगी फिर जावा थोड़ी देर बाद भाई जोगा सिंह सोचिया भी हुण लोकी अपने अपने घरां विच चले गए कोई नहीं वेखदा तो भाई जोगा सिंह अज जिसका मन कमजोर हो चुका है हमें ते हंकार ची वेसवा दे चवारे दी पहली पौड़ी ते पैर रखदा या कुछ नहीं कछ लक दी मारे ताने एओ फेक तेरा सदगुरु जाने ओए पंजे कक्के तार के ते झूठ बनाया ठाठे जा सिखा कर अपने कर जपजी दा पाठ अमृत वेला तो गुरबाणी नाल जुड़ना सी किधर आ गए पहरेदार दे बचन सुन के भाई जोगा सिंह जिन्हां पौड़ियां थाणी उपर चढ़िया सी हेठां उतर आए हेठां आया कोई दिल जो ख्याल आ गया फिर पौड़ियां ते चढ़ गई अगे तो पहरेदार ने उन्हों कुछ किया सी ए उपर पहुंचिया पहरेदार ने कहा मुड़ आ गए हैं हां क्यों आए हैं दो गल्लां तेरे नाल करनियां
1: कर
0: की कहना चाहुंदा भाई जोगा सिंह ने कहा मैं इस वास्ते इत्थे नहीं आ सकदा कि मैं गुरु का सिख हां पहरेदार ने कहा इस नरक कुंड विच पापी बंदे आउंदे इस बूहे दे उत्ते पैड़े बंदे आउंदे हन ते कलगियां वाले ने तो सिख नु एक रोशन मुनारा बनाया है वो अंधेरे क्यों गिरे इस वास्ते भाई गुरु का सिख इत्थे नहीं सौंदा भाई जोगा सिंह ने किया ठीक है जे मैं गुरु का सिख हां इत्थे नहीं सौंदा फिर मेरिया अखां धोखा नहीं खांदियां तू भी इत्थे गुरु का सिख जापदा तू इत्थे क्यों आया आखो श्री भाई उस वेले प्यारी सात संगत पहरेदार दे नेत्र सजल हो गए हैरान होके भाई जोगा सिंह ने कहा कोई जरूरी ड्यूटी है पहरेदार ने कहा हां भाई ए तो मजबूरी दी ड्यूटी पे आ जांदा आखो श्री भाई मेरा चित नहीं खरो करदा इत्थे खड़ोण वास्ते पर मजबूरी दी ड्यूटी भाई जोगे ने कहा फिर ए मजबूरी दी ड्यूटी छड़ क्यों नहीं देंदा पहरेदार ने कहा की करा किसे वेले किसे ने कहा सी मैं तेरे जोगा ते मैं भी कह बैठा जे तू मेरे जोगा ते मैं तेरे जोगा ओदी बांह फड़ी सी बांह फड़े दी लाज प्या रखदा कुतरी भाई छड़ी नहीं जाती मेरा चित तो नहीं करदा पर मजबूर चंगा भाई तेरी मर्जी भाई जोगा सिंह हेठां उतर आया नाल दे सिख नूं जगाया दोवें तुर पे आनंदपुर साहब पहुंच गए आनंदपुर साहब जी का ध्यान धर के प्यारी साध संगत बोलो सतनाम अगे मेरे कलगे वाले दा दरबार सजिया होया सुरती नाल कर लो दर्शन ते प्यार नाल आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब भाई जोगा सिंह पहुंचिया पर अंदरों सोचता है मना गुरु अंतर जामी है पता नहीं की सजा देवेगा आखो श्री भाई पर जिस वेले भाई जोगा सिंह पहुंचिया हजूर ने दूरों वेखिया ते प्यार नाल मेरे चोजी पातशाह कहते हैं की

रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ तू जे लगे, हर नाम छोड़ तू जे लगे, तिनके गुण हो क्या कहूं।

हाँ क्या सलाही किरवजन, हे मेरे साईं, ए जीव तेरी की उपमा कर सकता है। मच्छी की जाने के सागर केडा वड्डा है, पंछी की जाने के आकाश केडा वड्डा है। हाँ क्या सलाही किरवजन, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मिलाई, मैं तुझ में बेली कौन। हे गरीब नवाज, मेरा तो आसरा ही तू है, मेरे जीवन का सहारा ही तू। मेहरबान साईं, मेरे रब्बी दाता, बचपन खेल कूद विच गुजर गया, जवानी मस्तानी अपने आप का पता ही नहीं रहा। गरीब नवाज हुण तां बुढ़ेपा आ गया। ए मेरे दाता, हुण तां कंबी दा बरूटड़ा हां, पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते रोड़ के लै जावे। हे मेरे धन गुरु नानक दाता, मैनू दर्शन दे। दर्शना दी दात पे मंगदा है कौन, प्यारी सासंगत राय बुलार आखो श्री वाह। राय बुलार, ओ राय बुलार, राय पवे तलवंडी दा मालिक, पहली मेरी गुरु नानक नु वेख्या, गुरु नानक जोगा हो गया, अज रो रहे है बार खूह ते बैठा है, नौकर ने चौकी बिछाई है उत्ते बह के राय बुलार रो रो के अरदासे पे कर। हे मेरे दाता, आ मैनु दर्शन दे, अखां चो अथरू डिग दे, चिट्टे दुध वर्गे दाड़े ते आखे पहंदे, मानो सुचे मोती जड़े हन प्यार दे। रोंदे अखां दियां सिपियां चो प्यार दे सोची सुचे मोती डुल रहे, ते अरदास करदा कि आवा पावे करिए प्यारी साध संगत अरदास। अज राय बुलार बेनती कर रहा है, हे निरंकार, धन गुरु नानक सतेव पातशाह, 12 साल का विछोड़ा किवें सहारिया जा सकता है, आओ दर्शन दे। अखां वस रही हैं ते रसना बेनती कर रही है कि पहले सेवक

और सारे दांत मंगो आज पूर्णमासी दा ए समाते पूर्णमासी हो जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिता जी मेरे नंकारी वीर नु ना मार, मेरे रब्बी वीर नु ना मार। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे नंकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सर जावन ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहने राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेड़ा हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढ़े। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच भी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लेंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दिया कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुके मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहने लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दियां आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह? अदूर कहन लगे हां मरदाने, तारां भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइलां बन गईयां न, पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने, एक टेलीग्राम दी तार मरदाने, एक राग दी तार है। ये जरा कीर्तन हुंदा है ना, ये भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन। किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विन दी चीजा परोम दीए, तार विन दी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची। मरदाना अगे ही चाहुंदा सी, 12 सालों तू विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू। नेत्र बंद कीते, खोल दे जो खोले, की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही भाई, पर मरदाना काला है, 12 सालों तू बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहने लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या, मरदाने ए पढ़ की

मन अंधा ना हो सुजान कोट साहब हो दयाल कृपा करे ता साहिकार करे से सो सेवा करे जिसनों हुकुम मनाए से हुकुम मनेंगो प्रवाण ता खसमे का मैल पाए से खसमे भरोसो करे।

आप जी विसाखी का पुरब मना रहे हो, कलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन, ते शब्द भी उन्हां दा ही है कलगीधर पातशाह जी का। दोवें शब्द राग विच दास पढ़ेगा, दोवें शब्द कलगीधर पातशाह जी दे ने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा, क्योंकि आप जी नूं कई बारी समझ नहीं आवेगी कई तुका दी। अस्थाई दी तुक है, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, कि गुनन को पहार है। अकाल उस्तत ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है, दीनन को दाता है, ते दुष्टां दा ओ नाश करदा है, ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करदा है, ते ओ गुनां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुनन को पहाड़ है। तेज हूं को तर है, के राजसी को सर है, के शुद्धता को

ममता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है भटियार। भटियार भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाट नाल, मारव ठाट नाल। ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छपता, उस तो बाद इसे ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होएगा वो होएगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अवै बिनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे कर नानिद, मेरी अवै बिनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच। आप जी श्रवण करो।

सो अंत सो बहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तन्मय आकाश प्यार सर्वलोक।